छोटे छोटे चरण उसके राजमहल में दौड़ेंगे, उसकी प्यारी किलकारी राजमहल में गूंजेगी। वो जो हंसेगा नगर हंसेगा, उसके साथ जग झूमेगा। कल का सूरज आज ही देखो अपने राज्य में चमकेगा, वह आएगा। हाँ, पहलिया मत बुझाओ जी, ये बताओ ना कौन आएगा। अपना युवराज।